ताली ताक धुम ताक ताली ताक जम ताक झाला आंब ताक झुग ताक ताली गेने तू ताक नाक ताक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक झुम ताक नाक नाक जम ताली ता जग ताली ता जन जाने को खुदारी दाबू ताली गेने ताली ताली ता जग ताली ता जन जाने को खुदारी दाबू ताली गेने जम ताली

0: हिंदुस्तान का तेरा तू?
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

वाह महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश जी में बहस छिड़ जाती है कि हम में से बुद्धिमान कौन है। दोनों ही अपने आप को बुद्धिमान और बड़ा बताते हैं। इसी प्रसंग को लेकर कार्तिक और गणेश जी अपने पिता शिव शंकर और माता पार्वती के पास जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती उनका प्रसंग सुनकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उनसे कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जो पहले आएगा वही बुद्धिमान होगा। कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं और श्री गणेश नयन मूंद कर हाथ जोड़कर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगते हैं, क्योंकि माता पिता का स्थान तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। श्री गणेश की बुद्धिमता से भगवान शंकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही जीत हुई है। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं भोले बाबा का ये प्यारा सा भजन।

जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन लाखों की संख्या में लंबी लंबी कतारें बनाकर हरिद्वार से कांवर में गंगा जल भरकर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव कांवर कांधे पर रखकर पैदल चलकर बम बम का जयकारा लगाते हुए शिव भोलेनाथ के द्वारे पर आते हैं। तो आइए मिलकर गुणगान करते हैं महादेव का।

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुनें, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितंबर को मीरवाड एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुन वालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खयाई बिनकोट राव तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुकेश जी की आवाज और फिल्म अनजान राहें से गीत को आप सुने और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम को। इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl।

रूट के मत जाना, मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने आशा भोसले की आवाज़। और बहुत पुरानी फिल्म 1958 निखतीन अख्तन फैफ्तख के फिल्म फागुन से निकाला हुआ गीत। और अब आशा जी के साथ मुकेश जी को आप सुनेंगे।

हम दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और जवाब आएगा, जरूर आएगा। मुकेश अंदाशाह जी, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम स्टेशन, युवाड़ो जाला रेडियो।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

धूम का मौसम और मस्त महीना। फिल्म उजाला का गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और गाने वाले मन्ना दे एंड लता जी।

मैं जाऊंगी मेरे पीछे ना आना, चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी से आप सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, लता जी के साथ अब आप सुनेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद साहब को।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: ये है उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर।
1: ये था आपका और हमारा साथ उजाला रेडियो पर। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात होगी उजाला रेडियो पर।

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

0: को के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर, दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टेल्फेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल की आयु में निखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रो का साढ़ू भाई दरकन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा आजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लैचकंदाम में हो गई है। आम्स्टेल्फेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में निखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फुफा अजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन के मृत्यु लैचकंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। Vanavond van 7:30 tot 8:30 onze zorg ke Murdalay Tripstraat 309 Den Haag me. Arthi ke dah kriya aane wale mangalwar din me 4:15 baje. Dinsdag aanstaande 4:15 kiye jayenge. Crematorium Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 Rijswijk me. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

और दविंदर सिंह सिवनाथ की आवाज में इस गीत को आप सुने सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और प्रोग्राम का इस हिस्सा में कुछ बैठक गाना एंड कुछ लोकल गीतों यानी कि तमाम वेस्ट इंडीज से निकाल करके पेश है

और ऐ दिल मुझे बता दे कि तू किस पे आ गया है। अश्नी अश्नी माता दिन, हाँ अश्नी माता दिन की आवाज में गीत को आप सुने।

और कबो कबो रतिया पहाड़ जैसे लागे, कबो कबो रतिया पहाड़ जैसे लागे। अगर रतिया पहाड़ जैसे लागे लगल तो धर ले समझ ले कि मोइलक है बतिया। एक्टवेल दविंदर सिंह से आप सुने उजाला रेडियो पर।

0: जनक तेरे द्वारे पर भीड़ भारिल भाड़ी। यार रसिका दीन दयाल की आवाज में आप सुने। एंड तू जोन मांग तू बोल, तू जोन मांग तू सोच, हम तो मांगीला बोले दैट्स इट। हेल खुद ही फदान या तो
1: सेक्सी
0: एंड न्यू
1: सेक्सी
0: टू फेमस।
1: Yo!

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: से।
1: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान, सुनिए उजाला रेडियो पर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर। ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवराजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवराजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मैं तो तेरे वास्ते हुए पानी पानी, सरेआम ही लुट गई ये जवानी। फिल्म का बारे से निकाला गया और deze geweldige song is gezongen door Sunidhi Chauhan. En dit is de geweldige stem van Rahat Fateh Ali Khan met zijn geweldige hit Saruri Tha.

जिक्र तेरा आयतों सा, तू लगे है राहतों सा, तू सुकून है चाहतों का बाखुदा। Geweldig mooi gezongen door Mohammed Irfan en is niet afkomstig uit de film. Nee, dit is een single song release. Ujala Radio है ये सुनने वालों, जो हर जगह और हमेशा हमेशा की तरह आपका साथ है, एंड सो ओक वंदाग है jouw favoriete radio, overal en altijd, waar je maar wilt. Het maakt je vrolijk, het geeft je energie. Wat zou je toch zonder moeten, hè?

0: गीत, चाहे ये जमीन ये आसमान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे. Geweldig, mooi gezongen door Arijit Singh en Tulsi Kumar. De tekst die is geweldig en deze is afkomstig uit de film Salamat. Nee, correctie, uit de film Sarabjit. Gita genaamd haar Salamat. En dit is Mohit Chauhan.
1: क्यों रो पेंदे नैन जदों हस दे
0: मैं तो वेर एन प्रख्त गसोंग
1: दस दे
0: दस दे
1: बसानू
0: एर फिल्म इश्क दरिया

उज्जैन रेडियो है ये सुनो वालों, मैं हूं आपका सेवक अम्मी जयराम। एक बार और हम आपको स्वागत करते हैं यहां एकदम लाइव इन डायरेक्ट स्टूडियो डेन हाग से।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

0: Crowd Oldin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुनें, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितम्बर को मीरवाट एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब भी बुक करें। दिल के
2: चैन। Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en

0: इश्क मोहब्बत प्यार की बातें बेकार की बातें हिल के गाना है बेबी कल के सोचेंगे कल को अरे फिल्म है बेबी दिया 2007 या द बिग ओ रीमिक्स वर्सी
1: इस पल को कल की सोचेंगे कल को
0: दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो है ये सुन वालों मैं हूँ अमित जयराम एंड हिल का गाना स्पेशल फॉर यू हियर ऑफ द प्लेलिस्ट इस बार फिल्म बागी दिल द्री से या एक फिल्म आज इस यार 2020 एक खूबसूरत सॉन्ग खूबसूरत गाना एंड इस गजोंग दो निमंत मिनट दान रोशे कोली सामान में एशान

रे मेरे सबने सभी बंद आंखों के ताले में है। खूबसूरत गाना, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, gebracht uit de film Kabil en gezongen door niemand minder dan Jubin Nautiaal en Palak Muchaal. De film Kabil met in de hoofdrol, ja, Hrithik Roshan. Or Sunhya Gana, groepsrit Gana, or Ganaka naam he, Jo Muskurahat. Mr. Anu Malikewans mee. Film के नाम है द डिग्री।

हैंगओवर, तेरी यादों का, तेरी बातों का, मीत ब्रो अनजान, डीजे सुमित से थी en Prince. Ja, zoveel mensen hebben gewerkt aan deze Ghana en is afkomstig uit de film A Kick. Filmka naam hai Ek Hazina Thi, Ek Diwana Tha. Aur Ghana ka naam hai Huwe Bechain.

मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। फिल्म का नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था और गाना का नाम रहा हुए बेचैन। खसोंग दोनी मदमी दान यसर दसाई एन पलक मुचाओ। और बढ़ते हैं ये प्रोग्राम खूबसूरत गीत के साथ और इस बार गाना का नाम है ओ साथिया। फिल्म का नाम है स्वीटी वेट्स एन आर आई और देश गाना इस खसोंग दोनी मदमी दान अरमान मालिक एन

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल के आयु में नेखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रो का साढ़ू भाई दरकन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा आजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लैचकंदाम में हो गई है। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में नेखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन के मृत्यु लैचकंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। Vanavond van 7:30 tot 8:30 onze zorg ke Murdalay Tripstraat 309 Den Haag me. Arthi ke dah kriya aane wale mangalwar din me 4:15 baje dinsdag aanstaande 4:15 kiye jayenge crematorium Eikelenburg Eikelenburglaan 7 Rijswijk me. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

7:07 का वक्त है मेरे प्यारे सिनोल और स्क्वाड ओवरसीव, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे सुनने वालों। आज इस शनिवार 19 तारीख सितंबर को आज फिर एक बार मौका मिला है मेरे प्यारे सुनने वालों आपका सेवा करने का। अब साथ रखा तो हम आप तक पेश करेंगे प्रोग्राम अब से करीबन रात्रि में 12 बजे तक सैटरडे नाइट फीवर, खूबसूरत लोकल्स के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे। तो जाने तो वीकेंड वाइब्स, नए पुराने लोकल्स जो आज रिलीज हुए हैं, कल रिलीज हुए हैं, पिछले हफ्ते रिलीज हुए हैं, और उनके साथ साथ भी कुछ पुराने लोकल्स भी सेवा में हाजिर हैं। एक एक निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे मेरे प्यारे सुनो। तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी को, एक शुभ वीकेंड, शुभ शनिवार आप सभी को हम कहते हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, दुनिया के जिस कोने में भी आप सुन रहे होंगे, आप सभी को स्वागत करते हैं। वेलकम इन द अर्थ सेंडिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे प्यारे सुनो, ये प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर आप इश्तिहारे सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का क्या हाल है और नतुलक सड़क का क्या भी हाल है, और हमारी ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों लगातार आप व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं मुझसे, और व्हाट्सएप का नंबर है 02-3630-0000। सुनिए 2-3-6-3-0-8-0-8। और जो लोग ये कश उठाते हैं शनिवार को हाय हेलो कहने के लिए ऐप जो करते हैं लोग शनिवार को, तो उन सभी के नाम से गीत मैं चलाता हूं। और गीत कुछ ऐसा है कि हम 8 बजे की इश्तिहारों के बाद लोगों के लिए गीत चलाता हूं, और जिस तरह से ऐप आते हैं उस तरह से हम भी गीत चलाते हैं सभी के लिए। जो पहले ऐप किए हैं उनके गीत पहले हम चलाएंगे, और टाइटल आप बिल्कुल मत कहिएगा व्हाट्सएप पर, गाने हमने चून कर चुके हैं। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप एक इसी लिसनिंग सॉन्ग चाहते हैं गुसोल, या तो आप एक धमाकेदार सॉन्ग, चलता सॉन्ग आप चाहते हैं, या बैठक गाना आप चाहते हैं, हाँ ये मुमकिन है। तो मेरे प्यारे सुनो लो, 02-3630-0000, 02-3630-0008 पर आप अवश्य अभी से ऐप करना शुरू कर दे। और रहे आपके कामकाज के लिए मेरे प्यारे सुनो वालों, आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, धन का रत्न तुलको फियोंस वेबसाइट, दून वेबसाइट पर जाइए www.ujala.nl। और किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर आपको हुए है तो आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तार के जरिए भी अपना कामकाज दिलवा सकते हैं। वन मांडख तो तुम्हें सात रख, वन ऑफ मोर्खंस 3 यूर, तो तीन में रख 3 यूर, 02-4090807, 02-4090807। या तो लगातार आप मेल करें आपके कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, और बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी पल किसी भी वक्त आप उजाला रेडियो को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, info@ujala.nl, info@ujala.nl। और भी बकबक करना है आपसे, लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलते हैं आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। Enjoy your weekend, enjoy Saturday Night Fever, and enjoy Aapika Manchaha, our favorite station, Ujala Radio.

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, मैशअप आप सभी ने सुना है, एक नौता मैशअप है और ये था द गुड वाइब्स मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारे प्रिय सुरिनाम का। चार मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 7 बजने में आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। वीकेंड है मेरे प्यारे सुनने वालों, मौसम का हाल तो बहुत खूबसूरत तो है नहीं, काफी हवा है, बारिश भी हो रहे हैं और थोड़ा सा ठंड भी है। हालांकि मैं आज आम्स्टरडम में था और लगभग कोई 20-21 खराब था और मुझे तो ठंड तो नहीं लगा। हाँ हवा था तेज दातवा, और अभी तक हवा मैं देख रहा हूँ बाहर, ये पेड़ जो है यूं यूं यूं जा रहे हैं, नाच रहे हैं। मेरे प्यारे सुनो, आप सभी को रतन का फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार और अरापर्स हैं। सैटरडे नाइट फीवर फिर एक बार 5 घंटे आपका सेवा हम करेंगे रात्रि में 12 बजे तक। और एक गीत हमने चलाया आज का ओपनिंग सिलेक्शन, और उस गीत के दौरान 5 लोगों ने ऐप किए हैं, तो आप 5 के लिए 8 बजे के इश्तिहारों के बाद जरूर से जरूर कुछ ना कुछ हम चलाएंगे प्लेलिस्ट से निकाल कर। तो आप ही चाहते हैं नन मुझे ऐप ना 020-363-0000। मैं देखता हूँ रोहित और रायन, और ये है सरनाम का भी एक फॉर्मेशन द स्टार्स, और एक पगड़ी मिक्स है। चलो सुनते हैं ये कैसा पगड़ी मिक्स है, मिलकर हम सुनते हैं।

हुड्डी गनवा दोन होइगे। वही हम भीरल बाती इतना काम से और अब हम शुरू कर लिए। सबसे पहले हम हरदम तुम लोगों से बोले ला कि इतना ढेर कंप्यूटर हमारा आगे है, व्हाट्सएप है हुआ हुकुआ में, तो कमर्शियल पे इसे हुआ है हूँ हमार हुआ स्कॉइंस, जो हमें चाहिए ऐसे स्कॉइंस ताकि के तू जाने। एक वा कहती है न्यूज चैनल माया न्यूज हम बहना तो लोगों के ना बताएला तेन शायद एरख कुछ है वहां ऑन दी आवर आप सुन रहे हैं न्यूज दन फिने क्या दन खाएक दिंग इसनी तरह हाल आपको बोर नहीं करेंगे वन न्यूज इज ओक हिल फाक आलते इट्स फाक स्लेक्ट न्यूज है तू जे ये पढ़े तेले टेक्स और तुझे ये न्यूज था कि तो जोन ची एक से दुखी चीत हो वही सब बतावे मोई मोई चीत कभी सपना बताए दोस्तों दू एक धारम हिल वैनिक इन टेनिस में आउटसेंडिंग maar het is er wel, ik moet er wel op letten, want toen had je aan het zeggen, ik ben boli van, dekho, Putin hier aige hai, pahunchge hier Rotterdam ke Central Station pe. Ja, dan moet ik wel natuurlijk, toen lang betawek pari, juta uta haldis pehnek chahi, am longa ke dhorek pari, tu jane hai toch. Maar voorlopig hem parhila ki una ail hai, aur hem na sochila beu aai. Dus jutwa na pahin. Blijf waar je bent, lekker warm, mijn pyare sinne walo. Enjoy your weekend. Umeed aur aasha karte ki kuch chatak matak aapne khaye ho, banaye hain aur kha rahe honge. Dosto hiti premio ke saath shayad aap ho. Maza le rahe hain, aap enjoy kar rahe hain apna weekend. नाउ मैंने भी मेरे प्यारे से नालों हमने भी भरपूर एंजॉय की है बस हियर लेके नाम सदाम मुझे जाना पड़ता है इतना रोटरडम से एकदम हम सदाम जाना पड़ता है हम सोई सो क्योंकि मुझे हम सदाम भी बहुत पसंद है और नेचुरली मेरी बेटी भी वहां रहती है और उजाला के कुछ कारोबार है वहां जो देखना है एंड नेचुरली तुलों ना गए लेकिन तुलों हम में बैठ के सुने हैं घरे मैं ऐसे आज शो है थिएटर द मेरफार्ट में और शुरू हो अब ना भैल है जो तुम आगे जूता पहने तो देख पुटिन खटना मैं तू ढौड़ ढौड़ के जा सके है मेरफार्ट वन शो 8 बजे शुरू हुई थोड़ा उस दौड़ के जाइए हम न जाने की काटता है कि ना पहले उच्च जो टाक लिए तब जूता पहन के दौड़ के चल जाइए ठीक है मार द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड आज कॉन्सर्ट है जो जलारी जो रचाए हैं थिएटर द मेरफार्ट में जिसमें 30 आइकॉनिक आवाजें आप सुनेंगे वो एक सफर में आपको ले चलेंगे बॉलीवुड का डाउन द मेमोरी लेन और मौसमी उबड़ॉय शिखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयक मेरे छोटा भाई बॉयक डाटा दिन एंड नेचुरली निजाम वागिद हुसैन गाना गाएंगे और ओनर बखलाइडिंग फन मुंबई बीट्स बोई तो काटता ना किले तो किस पैट हुई वन फोकस में काटता ना बच सके है उजाला रेडियो के कॉन्सर्ट हरदम uitverkocht rahe en zeker nu. Ik bedoel, het begint straks over 20 minuten. Maar toen mange koshish kare ham to ke na rokep cha. Mere pyare suno aapko wala rahe ki 020-363-0808. Bahut sare logo ne app kiye hai. Aur ja, als je nu gaat appen naar de studio op 020-363-0808. Zo snel gaat dat altijd. Dan zit je in het blok van 9 tot 10. ठीक है? तो खाद गाना जरूर हम ट्राई करें. Geen ga geen titels zeggen, want om niet koi koi titels हमें बतावे हैं. उस हम गनवन हमार लगे शायद ना होए तो तू निराश हो जाइए. दोस हम हमें तू टिटल ना बोलिए कि ई ट्राई करिए उ ट्राई करिए जोन हमार पास है भैया. वही हम ट्राई करें. बुरा ना मानिए. तू जाने तो. ये मैं खबर आंखें इफ ऑफ यू स्नेलो नंबर विल
बैफ बोलतन चलता नगमान बैठक चटनी तू जाने तो Of misschien wil je een rustige nummer zo? Dat mag je wel zeggen. Meer niet. Chili tani trinidad gumi. Amle jala tlonke. Chili.

या। नीलू एंड आइवन मेरे प्यारे सुनो, बहुत खूबसूरत हो मेरे प्यारे सुनो। चेक ऑन सोशल्स, फेसबुक, टिकटॉक और उजाला रेडियो का जो इंस्टाग्राम पाखिना है, हमसे जुड़ जाइए, हमारे दोस्त बन जाइए। गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो, तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं वहां पर मेरे प्यारे सुनने वालों, आसानी से आप पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर सकोगे। ये कहना तेल एन नटुलक तू कुंची कुंची ना कर सके, हम भी ना जाने ला। और एक जने ने पूछा कि मैं क्या खा रहा हूं। वेल खाई एलक से है एक वासे नाम सदाम, तो तू जाने आज हमें मिसल हम पकाया ला, बाकी आज हमें से ना रहा, झूठ ना बोल। हम जाए के हमें गो नासी और का नाम है हालफ हालफ रहा पेकिंग इंट बिना बोत और का नाम है खरूस केप वाला, ऐसे कुछ चीज हम कीन ले ली, तनी से खा ले ली बस वही। और यहाँ स्टूडियो के जो कुकन है वहाँ पर कुछ मसालेदार चीज हम सुंग ही ला। Ik weet wat het is, maar ik ga jullie nog niet vertellen wat het is. Wel, oké, je hebt mijn milie. Want dat is nog de vraag, je hebt mijn milie kina. Want kapers behouden hier uit studio wamen. Hebben milie, hebben mooi lagi, tap ham tulonke wat hebben ki koonchi bane hai, mazaledar. Ego baitak ho jai, mere pyare se nalo. At this weekend, en dan hoort er een boy baitak bij. En natuurlijk, jong talent van de Hira Brothers, Vishal.

Vishal Hira, mere pyare sunalo, main formaci the Hira Brothers, uit Hoofddorp, Anna Pavan Kumar. कई बार कह चुका हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, इट इज सो नाइस कि ये छोटे छोटे हमारे जो सूरीनाम का बच्चे हैं बैठक गाना को इतनी पॉपुलर कर दिया है। और ये बैठक गाना जो है हमारे भी कल्चर का एक हिस्सा है। और ये लोग इतने जोश से उसमें भिरे हैं, गाना गा रहे हैं। याद मैंने अलीम अब्लाई एंथ्रोत्सुप पावर फोर्स आलमाओ डिफरमासी जेंटल की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनो। लेकिन गीत चलाने से पहले ये भी मैं बता दूं, दिस हैव अ सोफिल मेंसा अल ऐप आल्स यू न्यू गाट ऐप दन सिट यू इन इट ब्लॉकिये फन 10 to 11। तो जाने तो हम 8 बजे के बाद शुरू करब, 8 to 9 इज फुल, 9 to 10 इज फुल। दस तू ऐप करिए अब तोर गाना तो के देरी से अगोरिक परी वन टनवा हम ड्राई करब तुस 10 and 11 यूर। एंड दैट हंग ओक वेयर फन ऑफ कि कितना स्नेल तू ऐप करे है। आज मा ब्लाइफ वाखते दन वर्ट इट मिस हिन ना 11। मिस्टर ट्रेवल

Yeah, the Little's Chutney Mix by Treble and the formatsi Gentle mere pyare sinwalo here on you are. आप तक हमने पेश किया है. हर एक हफ्ता हम स्क्रीनिंग करते हैं मेरे प्यारे सुनो वालों की क्या निकला है क्या नहीं. ओक ऑफ द डक सेल्फ जबकि हम प्रोग्राम सजाते हैं. एंड द डुएक नाचू लिखनी था लेन दार है पिक एंड क्लेन 3-4 एंड या सोम से तथ हिल फिल बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपको सुना नहीं पा रहे हैं. एक आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनो वालों और इस गीत के बाद ब्रेक होंगे 8 बजे का और ब्रेक के उस पार नाओमी थी

झूमो नाचो दिन है यही, पीले भी और जीले भी, दो दिन की है ये जिंदगी, दो दिन की है ये खुशी। एंड दैट इज वार, मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे दुखों का सामना हमें करना पड़ता है इस जीवन में, और सुख का जो पल है वो है छन, दैट इज हील वैन सो खनी तरफान नी मरफान, एंजॉय, बी पॉजिटिव ऑलवेज। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 बजकर आपका मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे, और सैटरडे नाइट फीवर फिर एक बार सेवा में हम पेश कर रहे हैं। पहला घंटा में था नगमाई जो हमने आप तक पेश किया है, कुछ धमाकेदार अपने ही चॉइस का, और अब से हम लिस्ट पर जो नाम लिखा गया है एपर्स का, अब फॉलो होर्ड ऑफ हम बेनकूमन एपियस नाम लिखा गया है, और उसके हिसाब से गीत हम चलाएंगे सभी के लिए। आप ही ऐप करना चाहोगे तो ये मुमकिन है 020-363-9000 पर आप अवश्य ऐप कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम रहे, एंड दैट गेल्ड फॉर इदरीन, हैव गेडुल्ड, आपका गीत हम जरूर से जरूर चलाएंगे, लेकिन हैव गेडुल्ड, और दैट कैन सम्स इवेंचस ड्यूर। और जो लोग अभी ऐप करेंगे, आपके नगमा शायद 10 बजे के बाद हम चला पाएंगे, बीवेयर ऑफ दैट फैक्ट। एंड आलक हम तुम लोगों से बताबे कि हम कौन सी खेली छा, वन टिक मोहाल प्रूफ कि मरचुआ ठीक है, निमकवा ठीक है, ई ठीक है तो ऊ ठीक है, अब भी बताबे तुम लोगों से। आइलिन जी अठालम, आइलिन जी आपका ऐप आया है, और हमेशा जब भी आप चुन किए करते हैं आइलिन जी, उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू वेल फॉर योर सपोर्ट, और आप भरपूर एंजॉय करें अपना शनिवार, अपना वीकेंड। रामोन लक्ष्मण का गाया हुआ एक बहुत पुराना नगमा, मैं आइलिन के नाम करता हूं आई हार्लेम।

रामोन लक्ष्मण की आवाज मेरे प्यारे से नालो हेलास नी मेरोन रोंस खदाल दख सांगर ये था फ्रॉम द एल्बम पार्टी टाइम रहने है रहना है तेरे साथ लेकिन छोड़ दे तू पीना शराब या मैं अति से खनोट में दल ये जो शराब है अति से खनोट में खनी तरफान मा आलस मत मात लेकिन बहुत शराब पीने से जो बात गड़बड़ाई गए हिलफुल मैं से है अख्तराफ स्पैट एंड दैट इज टूट एंड दूट सोन जो भी आप करेंगे सभी मत मात तो और अच्छा होंगे Maar je hoeft niet naar mij te luisteren hoor. Mere pyare se nol agle geet ki aur hum aapko le chalte hain. Jo apna weekend enjoy kar rahe hain, apna shanivar enjoy kar rahe hain aur tune kiye hue hain Ujala Radio par. Rotanam ka Rakesh aur Natasha. To thank you well, bahut bahut dhanyawad aap dono ne app kiye hain. Ye keh kar ki aap enjoy kar rahe hain. प्रोग्राम से मजा आप ले रहे हैं तो नताशा जी और राकेश जी रोटरडम ये नगमा आप दोनों के नाम

अरे बाप रे, खैर मेस, ये चटनी मिक्स जो है रोहित छेदी मेनू फरमाची द स्टार्स मेरे प्यारे सुनने वालों, जैसे खैर मेस तो के इतना बवेख कर एक परी जैसे तोड़ दही के स्ट्रो मार दे, मेरे प्यारे सुनो, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए चेक www.ujala.nl। तो मेरे प्यारे सुनो, जो चटक मटक बना और जो हमने चीखा अथवा स्कूतर, मुझे ऐसा सिर्फ लगा कि थोड़ा सा मिर्च उनमें कमती था, मार अथा तुम हार्ड किप लेकर मसाला में। और आज बहुत खुशहाल है स्टूडियो में मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ दोस्तों हैं, हमारे प्रिय भाई लोग हैं जो मजा भी ले रहे हैं और ये लोग, इनको भूख लगे है। एंड इस यूज़ हाउ डू फंक्शन तक मतक एंड इट इज हार्ड किप इन मसाला, लेकर लेकर उस होपल क्रेक एक सो ओकन कोबाचे आंदर्स प्रॉब्लम रही, हम खाली ना सुन सकेला। तो स्कीफनिंग शहर में लक्ष्मण जी रहता है और वहां से लक्ष्मण जी का ऐप हमेशा आता है। भैया लक्ष्मण जी, डंक यू वेल आपके ऐप के लिए, आप एंजॉय करें उजाला रेडियो अपना वीकेंड। अगले गीत मैं आपके नाम चलाता हूं भैया लक्ष्मण जी, इट्स इवनिंग, और आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। एंजॉय।

कभी पलकों पे आंसू हैं तो कभी दिल पे शिकायत है, मगर ऐ जिंदगी मुझे फिर भी तुझसे मोहब्बत है। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनो, एन इट इज 3 मिनट ओवर द क्लॉक फ्रॉम 9:30 मेरे प्यारे सुनो। सरे 8:03 गुजर चुके हैं जबकि हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। गीत हम नाम करेंगे अम्स्टरडम का जो रहने वाली है कैटरीना। थैंक यू ऑल कैटरीना फॉर योर अपीयर। खनित फॉर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय ये नगमा जो कैटरीना के नाम करता हूँ अम्स्टरडम।

दिल ने ये कहा है दिल से कि मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। प्रख्तक खमाक मेरे प्यारे सलामों, बहुत खूबसूरत ये गीत फिर सजाया गया है आप तक, हमने पेश किया है हीर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में मेरे प्यारे सुनने वालों। एंड एक है बखरीप फरनूम की दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस बॉलीवुड का जो है खतरौत मैत रणवीर सिंह, उनको फिन दोनों को बच्चा हुआ है अन दोख्तर जो साथ इस द्वीर। बधाइयां शुभकामना तो दीपिका एंड रणवीर। हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों वखानार अम्स्टरडम। अम्स्टरडम में सुन रहे हैं मेरा एक बहुत अजीज छोटा भाई, मेरा यार रफास नन्ने खान, और ये चिल नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस वक्त अपने घर में, क्योंकि घर का काम कभी खत्म नहीं होता। There is always something to do in a home. Rafas werkt niet te hard, het is ook weekend. En het wordt al bijna 9 uur. Dus je moet ook een beetje gaan chillen. Oh Rafas, ik ben zo blij met je appje vandaag. Ik heb een nummer opgezet, zoals jij die ook kon zingen. Je mag ervan genieten. En dankjewel, we spreken elkaar weer gauw.

Я beautiful, мере пересеновало вирешки а вас. Музавир ху яро. Ору се пехле мере бхиги бхиги си. Remember this is Yivar, мере пересеновало. Турант апко ле челенге агле гит ки ор. Ек чатни мешип. Шанил Нанху ji ка. And that is for यही रोहतांग शहर का भैया जॉनी कालीचरण जी जो हमेशा चून किए करते हैं। तो भैया जॉनी चाली कालीचरण जी के लिए हम कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद जॉनी कालीचरण जी आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, और खास करके भैया जॉनी जी एंजॉय दिस सॉन्ग।

ये आवारापन हेलक जाए फ्री मिक्स मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में। 9:08 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, शनिवार है अभी, इट इज वीकेंड। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। चा अन उन्स हियर बाय यू आर सलत नीत लिख है आपके घरों में द वीकेंड वाइब्स पेश हो रहे हैं। सैटरडे नाइट फीवर विद द ब्यूटीफुल लोकल्स मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके घरों में उजाला ही उजाला लाने के लिए, लेकिन घरों में नहीं, आप जहां पर भी होंगे, मतलब ये कि आपके दिलों में उजाला ही उजाला हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। 020-3603-9000 स्टूडियो का व्हाट्सएप है और अभी तक आपको मौका दिया जा रहा है ऐप करने के लिए। माने एपर्स मुतवल बसेफ है कि आप 10 बजे के बाद आपके लिए हम गीत चला पाएंगे एंड मिसकिन वेल नोह लाटर अति संबीच दुर्क। अश्विन ने ऐप किया है एंड अश्विन हतवत टिटल्स दूर गेव। अश्विन सो वर्कड इट नीट ऑफ सैटरडे आवेंड। नगमाओं का चॉइस मैं करता हूं और जो मेरे पास है उसी में से निकाल कर आप तक पेश करेंगे। सो आई होप यू डोंट माइंड एन अश्विन सेग फॉर माइन फ्राउ। यू हैव हर नाम नीट गनूम एन अश्विन यू हैव नीट गेसेग तू कहां से ऐप कर ले, बट दैट मैक नी आउट, आप जहां से भी ऐप कर ले अश्विन मैं ब्लेड अच्छा आपका स्टेम्बिन, आप भरपूर एंजॉय करें। एक नगमा वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंदर सागर मालिक की आवाज में, नाम अश्विन फोर्स एंड फ्राउ।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, इन हवाओं ने या इन हवाओं में किसी ने लिख दी दो दिलों की कहानी, एक तेरा है और एक मेरा है। सागर मालिक मेरे प्यारे सुनने वालों, इनकी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत पेश हुआ है। मेरे प्यारे सुनने वालों, फोलगंड वीक जो नए हफ्ता होंगे, dan bent u gewend dat ik er woensdag, donderdag en zaterdag ben. Woensdag met Back to the Future. Donderdag met Dilke Awaas. Or Saniwar, je programma lekker Saturday Night Fever. Lekin baat goed eisen heki agle hafte 23 september. Kisi majboori ki wajah se mein programma nahi bana paayenge Back to the Future. Dus woensdagavond, dan ben ik er niet met programma Back to the Future. Donderdag wel, 24. Ko aarte baje, seratri meg yara baje, peshkeringe dilkia was. En zaterdag de laatste van september, 26 tarik ko bhi seva karne chale aayenge. लेकिन फिलहाल हम Den Haag की ओर जाते हैं, जहां पर मिक चून किए हुए हैं। तो डंक यू वेल इफ मिक जी आपके ऐप के लिए, एंड नेचुरली बडंग फॉर योर सपोर्ट और चून करने के लिए हमेशा मिक दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, डंक यू वेल। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन, इनका गाया हुआ एक नगमा, मीका का नाम है दनाख।

प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं, और तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, सभी ने किया है। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो सैन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। हम टर्नआउट की ओर पर चलते हैं। टर्नआउट में सुनीता और बेटी खुशी रहती है। थैंक यू लिवेल सुनीता एंड खुशी टर्नआउट आपके ऐप के लिए। एक है अपन मोयो नंबर खसुंग डोर द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू में द फॉर्मेशन द इंडियन टेम्पटेशंस। लेकर मोयो स्विंग नंबर सुनीता जी के लिए और खुशी के लिए टर्नआउट।

आओ हम प्यार करिए। कुमार सानू विद इंडियन टेम्पटेशंस। मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो हमने पेश किया है, मैं घड़ी की तरफ देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों 3 मिनट बाकी हैं, और वो भी 9:30 में, 3 मिनट to 4 o'clock फन हाफ तीन, और ले चलेंगे अगले गीत की ओर जो हम पेश करेंगे अपने बड़े भाई के लिए। मेरे बड़े भाई राजेश छुटकन भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं खौड़ा शहर में। तो फैन बेंत जिन एक गीत हमने तैयार करके रखा है मुका सिंह की आवाज में, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वन ऑफ मारसी एक्सप्रेस, इनका गाया हुआ एक नगमा फॉर माय बिग ब्रदर राजेश छुटकन आयत खौड़ा। एंजॉय दिस सॉन्ग, enjoy your weekend and enjoy your Saturday night fever.

ही वो हसीन है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बसी है। रफी साहब जी का ये खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुन वालों मुका सिंह की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। डी से मुका सिंह ही वो मोस्ट है।

कुछ लोग प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं, दिस इज नॉट अ कॉन्सर्ट, लेकिन उन्हें मालूम है कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। कुछ लोग वाराणसी से हैं और उनकी जो इंटरनेट गड़बड़ा है तो वो भी ऐप करने लगते हैं कि अरे सॉरी कानित ने प्रोग्राम लाया इस तरह से, माँ के खैर सोर्ख भैया तू भरपूर एंजॉय करें, आप जो भी करेंगे एंजॉय। Ik ben blij dat jullie nog aan mij denken. Mag geniet. Er is meer dan alleen Saturday Night Fever, toch? Kabhi kabhi ho jata hai. To aap kare wo jo aapko karna chahiye. En maak je geen zorgen. Niemand is boos. Iedereen begrijpt. Ivy Jahangir uit Amsterdam. Ivy Jahangir. Ik kan me niet voorstellen dat Ivy mij niet gesupport heeft. Ja, het kan misschien. Ivy was ziek of wat dan ook. Wat eigenlijk in meestal. Ivy ke app. Hamishata. Dankjewel, Ivy. Aap ke app kili. Bahut, bahut, shukriya. Geniet van je weekend. स्टीफन बैटली इनका गाया हुआ एक नगमा आईफी के नाम करता हूँ। एंजॉय आईफी, एंजॉय।

आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। खूबसूरत गीत जो फिर से गाया और सजाया गया है स्टीफन बैतली जी के जरिए और आप तक हमने पेश किया है। स्टीफन बैतली संगण फंड फरमासी एटम सिदम रेसलेस। मेरे प्यारे सुनो लो, 10 मिनट गुजर चुके हैं 9:15 और अगले गीत होफ डॉरप शहर का जो रहने वाले हैं जॉय और रेशमा सुखू। थैंक यू लिवेल भैया जॉय सुखू जी एन रेशमा जी चून करने के लिए आपके ऐप के लिए। आप भरपूर एंजॉय करें उजाला रेडियो और खास करके प्रणाम सैटरडे नाइट फीवर मारना तू लकोक। आप भरपूर एंजॉय करें अपना वीकेंड अपना शनिवार। अगले गीत जो द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागीर हुसैन गाएंगे जॉय सुखू और रेशमा जी के लिए एट होफ टॉरप।

किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनालो उमर वागित हुसैन की आवाज। अगले गीत आपल दोरन की ओर हम आपको ले चलेंगे, वहां पर सफूरा सुबराती रहती है। तो सफूरा जी ये अपनी ताल तय, लेकिन सफूरा जी हमेशा प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेल सफूरा जी। आयत आपल दोरन फनाफ बखिन पवरिया सुइसो मैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये नगमा सफूरा जी आपके नाम करता हूं।

या धमाकेदार चटनी मिक्स मेरे प्यारे से नॉलो द म्यूजिक बैंड फ्लेवर मेरे प्यारे सुनो लो, ये उजाला रेडियो है जिस पर अभी तक आप ट्यून किए हुए हैं। मैं हूं आपका यारो का यार चंद्रम लाड़े पांडे और वक्त स्टूडियो टाइट 11 मिनट ओवर द क्लॉक फन 10:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे, और आखिरी घंटे में दैट इज फन 11 to 12 खवाली महसूस राय। कुछ नाम है और हमारी लिस्ट पर 5-6 नाम और है जिनके साथ साथ ये घंटे में हम नगमाएं चलाएंगे उनके लिए। मार फोर लास्ट ब्लॉक मखिया नक्टूरलक आप ऐप कर सकते हैं 02-3-3-9-9-9 जब हम बोल अब हो स्टॉप तब तो स्टॉप करिए। मैं स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो भी सुतमेर शहर में। और ये स्वागरी जी हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उनकी सपोर्ट उनकी प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेल स्वाग। एक गीत हमने तैयार करके रखा है गुड वाइब्स फ्रॉम सूरीनाम सुम्स ऑफ एन टू गीत का टाइटल है। फॉर माय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह आयुत सुतम।

प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसते है, मोरे नगरिया दिखा जा। डिफरमेंसी गुड वाइब्स मेरे प्यारे सुनने वालों, मिस्टर प्रे और क्वाइकी। अलमेर के शहर की ओर हम आपको ले चलेंगे, जहां पर टोनी इसरी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो भैया टोनी, एंजॉय योर वीकेंड। खनित भाई साथ रहा अपन, एक हैपन अन हेर लकअप बैठक गाना ही फन रोहित महाबली एंड मोतीमाला भोला सिंह एंड दिस वीकेंड दूसरो खान लेकर डांस। थैंक यू वेल टोनी, थैंक यू वेल खनित भाई, वीकेंड एंजॉय।

या रोहित महाबली और मोती माला मुलाजिम बैठक गान मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में एनातुल के साथ लेकर वीकेंड में इस तरह के नगमाएं स्विंग हील मालोय डपन रोटरडम शहर में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं एंड दैट इज बेनी यंकी डंकीवेल भैयो आपके ऐप के लिए फेन दच अफगस्टेम बेन बेनी यंकी जी खनित फाइन सैटरडे एंजॉय अपना वीकेंड भरपूर आप एंजॉय करें द टाइगर को हमने तैयार करके रखा है बेनी यंकी के नाम रोटरडम

0: धीरे धीरे आ जाना रे धीरे धीरे। द टाइगर विथ द इंडियन टेम्पटेशंस। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो, सागर मालिक जी की आवाज में आप सुनेंगे, और ये गीत जेनी जेनी के नाम करेंगे। थैंक यू जेनी फॉर योर अपीयर फाइन द चौक कफ्रस्टम बेंट यू आर उजाला रेडियो खनीत फन द सॉन्ग फन सागर मालिक एन फन यू आर फन सैटरडे नाइट फीवर एंड फॉरऑल ये सादरख यो वीकेंड। थैंक यू जेनी फॉर योर अपीयर।
1: जिगर में दर्द होंठों पे गीत लाया हूं तुम्हारी महफिल में

सागरमाला की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग इनकी खूबसूरत आवाज में हमने आप तक पेश किया है हीरो ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलेंगे ओवरसीज, ओशन के उस पार, न्यूयॉर्क सिटी, द बिग एप्पल में जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कविता जी घर से निकले हैं मोटर कार में बैठकर, और वो भी अपने काम पर सवार। तो कविता जी थैंक यू, वेल थैंक यू आपके ऐप के लिए। ब्लेसिंग ड्राइव एंड अ गुड डे एट वर्क। Very happy that you have tuned on UR and listening to my program Saturday Night Fever. Thanks for your app. I have a song here ready on the player for Kavita out New York City, The Big Apple, America. Shikhar Kumar. Mera dil bhi kitna pagal hai, ye pyar to tum hi se karta hai.

मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से तो करते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता हूं। हमेशा ऐसा होता है। ये बेन स्टूर, अच्छा अलीन बेन अख्तर स्पीकला, इसे कहेंगे वो इसे कहेंगे, और छम से वो सामने आ गया तो आपका जितनी बातचीत है सब बंद। मेरे प्यारे सुनो लो, खूबसूरत गीत शेखर कुमार ने फिर से गाए हैं, सजाए हैं, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। 10:45 का वक्त है इस वक्त स्टूडियो टाइट क्वार्ट फोर एल्फ, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 बजे की ओर। 11 बजे के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, 1 घंटे और विद द ब्यूटीफुल सोल नंबर हियर ऑन यू आर, क्योंकि रात्रि में 12 बजे तक हमेशा की तरह आपका साथ हम देंगे। हम अमेरिका में जम के रहेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क से हम चलेंगे टेक्सास की ओर, जो एक स्टेट है वहां, यहां पर डेलस भी है। वहां सुनीता और अजय अपने हिति प्रेमियों के साथ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। तो सुनीता और अजय को हम कहेंगे हैव अ ब्लास वीकेंड, और बेहद खुशी है हम कि चून किए हुए हैं हियर ऑन यू आर। एक मोती माला का जो रिमिक्स है, उनके गाए हुए नगमाए मोतीमाला जी का, रोहित और कविश मिलकर गीत गाएंगे प्रख्तक, और नाम करते हैं डारिन टेक्सास यूएस ऑफ ए, अजय और सुनीता के लिए और जितने भी लोग आप सभी के साथ है वहां, एंजॉय।

0: मुंड संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer.

लायन नन्नन मेरे प्यारे सिने वालों, ब्यूटीफुल रोमांटिक बैलेट इन्होंने ये गाए हैं और लायन नन्नन विद फॉर्मेटसी गुड फाइब्स हमारे प्रिय सुरेनाम जिसका। मेरे प्यारे सिने वालों, ठीक 11 मिनट गुजर चुके हैं, 11 बजकर 11 ओवर 11 एंड आवंट इज नॉट यंग, बिल्कुल जवान है क्योंकि वीकेंड है, शनिवार है, सभी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। एंड नैचुरली ऑल्स बिगिंस फ्रॉम दिस टाइम, लेकिन हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटा है क्योंकि 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे और इस घंटे में हमेशा की तरह खानो तरस खानो में तालमाल बैलेट सोल्स। एक नाम और है हमारे लिस्ट पर और वो है रोहिणी कल्लू जी का ऐत रोटरडम स्कीडम, जो अपने निखतों के साथ आज मिलकर सुन रहे हैं। तो रोहिणी जी, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार, खसल में ची निखत और एप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टू क्रेजी फ्रॉम सूरीनाम, इनका एक मेटली पेश करने जा रहा हूँ रोहिणी कल्लू जी के लिए। अर्थ श्री नाम रोतनाम

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सनलो टुकुरेसी फ्रॉम सुरिनाम और ये था अश्विन गोपाल। दिस इज यूआर मेरे प्यारे सनवालो और प्रणाम से भी जुड़े हुए हैं रतनाम का भैया राजेश सिंह। तो भैया राजेश सिंह को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, आप भरपूर एंजॉय करें अपना शनिवार अपना वीकेंड। यू आर और खास करके सैटरडे नाइट फीवर और ये प्रोग्राम में आपके लिए गीत चलाने जा रहा हूँ शिखर कुमार की आवाज में, एक किशोर कुमार का मेटली हमने तैयार करके रखा है। तो भैया राजेश सिंह जी आपके नाम करता हूँ।

शिखर कुमार मेरे प्यारे सुनोलो, खूबसूरत लंबा चौड़ा किशोर कुमार का मेटली सेवा में जो पेश हुआ है हीरो निवार उजाला रेडियो। मेरे प्यारे सुनोलो, 3 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 11:30 मतलब ये कि आखिरी आधे घंटे में जान पड़े हैं और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। हम आप तक पेश करेंगे अब की बार एक नगमा, द यूनिवर्स फ्रॉम सुरिनाम या सब स्टाम फॉर्स मैन इमेर तत्वी तकनीत सीकर। लेकिन एक पुराने एल्बम से निकाल रहा हूं नगमा और पेश कर रहा हूं ये खुदा जाने।

नवीन सरजू मेरे प्यारे सुनो वालों, और वो भी मेडो फरमाती गुड वाइब्स। हमने क्या तैयार करके रखा है मैं देखूं तो जरा, वक्त इतनी कम है मेरे प्यारे सुनो वालों की दो नगमाएं और उन दो नगमाओं के बाद यहां स्टूडियो से हम रुखसत होंगे। डिफरमासी शो बैंड एलिगेंस पेश करने जा रहा हूं विनोद शायर भंडारी।

विनोद शार भुंडी, इनका गाया हुआ गीत चुमलू होंठ तेरे हमने आप तक पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, अब वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं और इस आखिरी गीत के बाद हम यहां स्टूडियो रतनाम से रुखसत होंगे। आज जितने लोग भी साथ दिए हैं, ऐप किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डंकीवाल शुक्रिया, करम मेहरबानी। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम हमने सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय किए हैं, मजा ली है, लुत्फ उठाई है। ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर अगले हफ्ते जो इस महीने सितंबर का आखिरी शनिवार होंगे 26 तारीख फिर हम पेश करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट क्यूआर के स्टूडियो रतनाम से। लेकिन उससे पहले भी आप सभी से मिलेंगे वूंसा बेनेकनीत, वूंसा हावन बेनेकनीत में बैक टू द फ्यूचर मादोन राखवेल में दिल की आवाज। मेरे प्यारे से नोलो, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

हे सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: हिंदुस्तान का तेरा तू?
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,